इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ू।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1804-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। जी हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर भी मौजूद। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल को। ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। प्लीज लॉग इन टू www.radiochannel.com अगर आप घर में या ऑफिस में रेडियो चैनल सुनना चाहते हैं। दिल की धड़कन रेडियो चनार, मैं हूं जॉग ज़ूस। रेडियो चनार सही है मेरे यार।

0: Ninja Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चनार वेदर अपडेट
3: और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन क्या है मौसम के हाल आइए बताते हैं
2: रेडियो चिना वेदर अपडेट
3: दिन भर शावर्स और गरज बरस की भी संभावना है। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। मौसम में जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहे हैं कभी कभी तो लगता है कि भैया ऐसा नहीं है कि वादा ब्रोंडी है, बस ये है कि जो भी झीले दरिया वगैरह है तो कुंशन गासन के बिकॉज देयर आर रूमर्स दबाना इत किन गज दबाना उत किन गज और बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी में आगे पीछे निकल जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि फ्लड चैनल्स वगैरह दरियाओं से वगैरह दूरी बनाए रखें और क्या है कि पानी या बारिश गिरते ही दरियाओं में जो है दरिया उफान पर होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि दूरी बनाए रखें ताकि आप सेफ और सुरक्षित रहें।
2: रेडियो चिना
3: यू इंडेक्स अभी वीक पर ह्यूमिडिटी 91%, विंड स्पीड 0 पर है, विजिबिलिटी है 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:35 पर, आज का सनसेट होगा 7:41 पर। जी हाँ, अगर आप भी वो पर्सन है जो बारिश को एंजॉय करते हैं, पकोड़े हाथ में चाय का कप और इन टिप टिप गिरती बूंदों का मजा लेते हैं, तो खिड़की खोली बाहर देखिए और देखिए किस तरह से ये जो बारिश है आपको यादों के समंदर में डुबा ले जाएंगी। रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन, मैं हूँ जोक्स, धड़काते रहो।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
3: की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो भी होता है वायरल. वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए आपको सुनाते एक हीरोइक कहानी. एक लड़की जो कि ट्रेन में जा रही थी बेलपूरी खा रही थी लेकिन साथ में बैठा एक आदमी जिसके इरादे ठीक नहीं थे. एडवर्टाइजिंग का ये केस उस टाइम पर वायरल हो गया जब लड़की ने वीडियो तो बनाया लेकिन लोगों ने उस लड़के को रोका टोका और उसे सही सबक भी सिखाया. लड़की को इवटीज कर रहा था यह लड़का, लोगों ने पकड़ कर चांटे लगाए, साथ ही साथ उसके मुंह पर मेकअप करके पूरी ट्रेन में भी घुमाया. उसे यह एहसास दिलाया कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो जनता जनार्दन आपको ऐसा सबक सिखा सकती है कि आप उम्र भर याद रखेंगे. जी हाँ, कहीं ना कहीं ये वीडियो, ये वायरल पोस्ट हमें ये भी बताता है कि अपने लिए आवाज उठाना जरूरी है. वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन. मैं हूं जॉक्सिस.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: रेडियो चिटार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है डिप्रेशन इज़न्ट जस्ट being sad, it's a feeling. Nothing well wanting to feel everything. What is frequency? Har dil ki dhadkan radio channel. Stay hooked. Dhadkate raho.

0: Zeus. कौन आया
1: दोस्तों? रेडियो चैनल की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपडेट्स। जी हाँ, टेम्पल एले सस्पेंड किया गया है दोनों रूट से अमरनाथ जी यात्रा को, और ये जो कड़े कदम उठाए गए हैं इट्स बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर फोरकास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सेफ्टी एंड वेदर असेसमेंट्स के बाद ही यात्रा को रिस्टोर किया जाएगा। रेडियो चैनल 90.4 एफएम, आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण हो। और दिल की धड़कन रेडियो चैनल, मैं हूं जॉग ज़ूस, धड़काते

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का, शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं।

असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: और दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM और पर हम मिलकर दरकार रहे हैं जी हाँ, और जोरों से धड़काने के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से, आप मैसेज करके भी इंस्टाग्राम पर हो सकते हैं शो में शामिल। व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो का हिस्सा जरूर बने, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए। आज का टॉपिक व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं डाउनटाउन सोपोर की।

यहाँ डाउन टाउन सोपोर जो कि इतना इतिहास अपने अंदर छुपाए हुए है, जब आप सोपोर के टाउन में घूमते हैं तो डाउन टाउन आपको दिखी जाता है, पुराने मकान, हेरिटेज, वो प्यार मोहब्बत जो लोगों ने और उन मौजूदा बिल्डिंगों ने भी अपने अंदर प्रिजर्व की हुई है। क्या है डाउनटाउन सोपोर का इतिहास, क्या है डाउनटाउन सोपोर में खास, आज बात करेंगे डाउनटाउन सोपोर की। छोटा लंदन कहा जाने वाला सोपोर क्या छुपाए रखा है अपने अंदर, आज आपको बताएंगे। और अगर आप इस टाइम सोपोर से गुजर रहे हैं या सोपोर से हैं और हमें सुन रहे हैं तो हमें बताएं क्या जानते हैं आप डाउनटाउन सोपोर के बारे में। 8899904904 नंबर और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव में हूँ जागजिल सिलेक्ट। हाय हाय दिल का

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Studiyede çalan 90.4 FM her dil giderken hep enjoy kariyer mazdar şov WhatsApp. WhatsApp show mein aaj ka topic downtown suburb. Topic se related aap kuch kehna chahte hain, kuch batana chahte hain, koi baat hum tak pahunchana chahte hain, 8899-04904 is the number. अटट नौ नौ नौ सिफर चोर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज भी। जिन्हें हमारे साथ शाहनवाज लिखते हैं, शाहनवाज सर डाउनटाउन में ही रहता हूं और लगाव है मुझे डाउनटाउन से, क्योंकि सोपोर का जो डाउनटाउन है एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है इसके साथ। क्या आप कभी डाउनटाउन सोपोर में घूमे हैं दोस्त? पहले तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और रही डाउनटाउन सोपोर की बात, तो बड़ी क्लोजली अटैच हूँ मैं डाउनटाउन सोपोर से या नॉर्थ कश्मीर से। पर्टिकुलरली अगर डाउनटाउन की बात करूँ तो लोग सबसे ज़्यादा बातें हैं मुझे, क्योंकि उनके पास इतने किस्से इतनी कहानियाँ हैं कि आप सुनते सुनते थकेंगे नहीं, दिल भरेगा नहीं, आप चाहेंगे कि वो बोलते जाए और आप सुनते जाएं। क्या कुछ नहीं है जो आपको सोपोर में नहीं मिलेगा, प्यार मोहब्बत हेरिटेज किस्से कहानियां जिंदगी की सीख, वो जिरियां जो अपने अंदर कितना इतिहास भरे हुए हैं, लोगों की मिठास, सच्चा सोपोर, सच्चे लोग। जी हाँ, कहने को तो रब रेड रपए, लेकिन दिल सोने का है यहाँ पर। रिचार 90.4 पे आज बात हो रही है डाउनटाउन सोपोर की। आप भी जुड़े हमारे साथ, आप डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM सुनते रहो, धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की।

किनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मजदार शो चन के रे जी हाँ, मजदार शो वो सब आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ ही जागसूस। कुछ ही देर में अगली पेशकश आई फील गुड मैं नहीं बल्कि आई फील गुड फॉर एवरीवन। आई फील गुड एक वेस्टर्न म्यूजिकल शो जो आप रेडियो चिनार पर सुन पाते हैं ट्यूसडेज और फ्राइडेज को। जरा सा इंतजार देते रहें प्यार, अगली मुलाकात होगी उस पर। कुछ ही देर में हाजिर होंगे लेकर वेस्टर्न म्यूजिकल शो आई फील गुड ऑनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM सिटी हक्ट। दरगाह तेरा

بچس شہناز رشید تو تشو بوزان ریڈیو چنار 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM,
3: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4। A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026

लावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

सॉन्ग्स इस बारिश के मौसम में आग लगा रहे। 91.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ड्राइव बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बॉस ये है शो चुनार बीट्स।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। वैसे मस्ती मजाक तो होता ही है बट ज़रूरी है कि आपका और मेरा साथ, यानी कि मैं अकेले हूँ ऐसा कभी भी नहीं होता है, यानी कि मेरी पूरी वाइब और ट्राइब मेरे साथ होती है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, इट्स लाइक ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक ऐसा मजबूत बॉन्ड है, एक ऐसा मीडियम है जो आपको और हमें जोड़ के रखता है। एंड ट्रस्ट मी कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई आपकी बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सो हम ट्राई करते हैं कि आपकी बात पहुंचे वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़। सो मेरे दोस्त, आई एम हेयर, वाई टू गो हेयर एंड देयर, क्योंकि इट्स नॉट फेयर, बिकॉज अगर मैं हूँ शो चुनार बीट्स है, बीट्स ऑन रिपीट है, तो मेरी वाइब और ट्राइब आखिर जाती कहाँ है? मैं तो यही हूँ, आप भी यही है, ये मुझे यकीन है, क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग्स भी तो मैं ही चलाती हूँ आपके लिए। मैं तो कहीं नहीं चली, बस आपकी गली लेकर शो चुनार बीट्स की सवारी बराबर 2 बजे तक बैक टू बैक सॉन्ग्स।

Mates on repeat, show Chunar beats up, enjoy kar rahe on your radio Chunar 90.4 FM. Nayi sari baatein ho rahi hain, we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. So National Highway of Jammu and Kashmir पे आपको बता दी कि currently it's disrupted due to heavy rains, mudslides, shooting stones and अगर हम देखें तो अभी सूरत हाल हमने खुद देखा इंटरनेट पे जो videos आ रहे थे, जो तस्वीर आ रही थी, that was वो heart breaking भी था. वो कह सकते हैं कि nature का भी revenge चल रहा है, क्योंकि हमने खुद ही nature की कदर नहीं की. हम बोलते रहे, हर एक इंसान बोलता रहा कि हम ही इंसान गलत कर रहे हैं. हम खुद को तो कहते हैं कि हम अपने नेचर के साथ कुछ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, बट स्टिल हम ही हैं जो अपने नेचर को ख़राब करते जा रहे हैं. यानी हमारे अपने एफर्ट्स के कारण अभी नेचर हमारे साथ इतना हार्श हो रहा है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सब देखना पड़ेगा. सो ज़रूरी है कि दिस इज़ द हाई टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी ग्लोबल

वार्मिंग के कारण क्या कुछ हो रहा है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द अभी चीज़ें कितनी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हमारे खुद के कुछ असूल होते हैं ज़िंदगी में, जब हम चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम बोलते क्यों हैं, एक्शन से क्यों नहीं वो चीज़ दिखाते. सो एक्शन से भी हमने वो चीज़ दिखानी है और हमने चेंज लानी है. एंड उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी के लिए जो है नेशनल हाईवे पे अभी के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कभी भी बहाल हो सकता है. उसके लिए हमने TCU जम्मू श्रीनगर रामबन से आप संपर्क कर सकते हैं, एंड द नंबर इज 01912459048. इट्स फॉर TCU जम्मू एंड TCU श्रीनगर इट्स 01942450022 एंड TCU रामबन इट्स 9419993745. अभी अमरनाथ यात्रा भी सस्पेंडेड ही है और कब बहाल होगी उसके रिलेटेड भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बट फिलहाल के लिए अभी बारिश हो रही है, वेदर का सब इन्जॉय कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ काफ़ी हार्श भी हो रही है. सो हमने प्रे करना है और अपने एक्शन से चेंज लानी है. बट अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हमने पता होना चाहिए कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना इज़ नेसेसरी. हम सबकी ज़िम्मेदारी है ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना और गलत जगह पे ओवरटेक करने का कोई चांस ही नहीं है बॉस.

देखिए सुकून तो मिलता है जब बारिश हम देखते हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, बट ये भी है कि हमने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, सो दैट हम ये चांस मिस ना करें। बारिशों का भी एक अलग ही मज़ा होता है। बट मुझे बताइए कि आपको ये मौसम कितना अच्छा लगता है जब बारिशें होती है और शाम को धूप निकल आती है। सो टेल मी 8 9 0 4 9 0 4 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप करके।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुना और बीट्स आप इन्जॉय कर रहे हैं, ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोर इंडिया। देखिए ऐसा कोई इंसान ही जिसने स्पेशली हिंदुस्तानी को अपने इंडिया के बारे में ना पता, ऐसा हो नहीं सकता है। बस स्टिल कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम घूम चुके हैं एंड आज हम मिलके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि हिंदुस्तान का कोना कोना तो यूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम बात करते तो वो कहते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है, हम अपने कल्चर की बात करें या फिर हम डिफरेंट रिलीजन्स की बात करें, हर एक चीज़, हर एक रंग जो है हिंदुस्तान का, वो हमें, मुझे लगता है, हिंदुस्तानियों को और भी खूबसूरत बनाता है। पर क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या पूरा देश घूम चुके और कौन सी सी चीज़ आपको लगता है कि हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा अनोखी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और आपको लगता है कि हमें खास बनाती है हिंदुस्तान की वो चीज़, मुझे बताइए। शो का ऐसा बन जाए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोर इंडिया। अभी शो का ऐसा बन सकते 8899-0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं आप।

0: तो संभाल चुके हैं अपनी जिम्मेदारी और हमें पता है कि कौन सी डेस्टिनेशन खूबसूरत है, कहाँ जाना है, किस सीज़न में हमें कहाँ पे खूबसूरती देखने को मिलेगी एंड एक्सपेंसेस क्या है। स्पेशली जब हम इंडिया की बात करें तो ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहाँ हमें जाने को मिलता है और हमें पता है कि हर सीज़न का एक खास, एक वो कहते हैं ना कि एक ख़ास बात होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा जहाँ पर हर मौसम में एक अलग ही बात होती है, यानी कि हर मौसम हर टाइम एक अलग ही वाइब आपको आएगी। और हर मौसम की एक अलग बात ये होती है कि कश्मीर हर मौसम में खूबसूरत दिखता है और हर कोई इंसान जो है वो ये सोचने पर मजबूर होता है अब कौन सा सीज़न मेरा फेवरेट है। अब कश्मीर है ही जन्नत, तभी तो कहते हैं जन्नत है कश्मीर और यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है। बट आप मुझे बताइए कि आपको हिंदुस्तान की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या खास बात है हिंदुस्तान की जो आपको सबसे अलग लगती है। 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शूट चुनाव भी इसका हिस्सा बन जाइए।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

शो चुनार भी सब सुन रहे थे ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM में सारी बातें हो रही थी आपके साथ और हम बात कर रहे थे एक्सप्लोर इंडिया के बारे में और अब टाइम आ चुका है कि आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे और उसके लिए आपने 8899904904 पर कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी कीजिए, इट्स 8899904904, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने फेवरेट ट्रैक्स ओनली ऑन म्यूजिक ऑन डिमांड रेडियो चैनल 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

जी हाँ, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का ये ट्रैक इकरा ने डेडिकेट किया है अपने फ्रेंड के लिए. नाम तो नहीं बोला है बट उन्हें ये बोला है कि ये मेरे फ्रेंड के लिए डेडिकेट है. तो इकरा की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक आप एंजॉय कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड. और आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए.

हाय मैं हूँ अस्रा और शो शुरू हो चुका है. हंगामा ड्रामा एंटरटेनमेंट क्या इन्फॉर्मेटिव है और इसके अलावा लाइफ में क्या बजिंग चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है और उसके अलावा ये भी कि लाइफ का जो फिलोसॉफिकल टच है वो यही मिलता है. मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, जैसे कि अभी के मौसम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। और दीज आर कॉल्ड अ समर शावर बिकॉज समर्स चल रहे हैं, और जब भी बारिश होती है तो बहुत हसीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है, और सच में मन करता है नाचने का, थिरकने का और इस मौसम को जम के एंजॉय करने का। Definitely, if we want to be that cutesy Bollywood, Bollywood girl who loves rain, romanticizes rain, so chum chum aur naachne ka man hi to karta hai. Aur bahut sare aise log hain jinko definitely sach mein barish bahut pasand hai, barish ka mausam bahut pasand hai, but kuch log aise bhi hote hain jinhe pasand nahi hai because bijli chali jati hai na, aur bijli se phone band ho jate hain, to bijli na ho to phone band, aur phone band to entertainment band, to बहुत लोग प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत लोग इमोशनल भी। बट ऑनेस्टली अगर अभी की बात करें तो समर्स में स्पेसिफिकली जब भी बारिश होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, गर्मी थोड़ा कम हो जाती है, मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है, यू लव टू डू लाइक सम फिजिकल एक्टिविटी बाहर, आप बाहर घूमना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द मौसम जो रिलैक्सेशन दे रहा है हमें। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, और अभी तो कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। और देखिए, अभी शो शुरू हुआ है कुछ देर पहले, बहुत सी बातें होंगी, देयर इज सो मच मोर टू गो अप टू द फोर। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar, the hottest frequency of North Kashmir, 90.4 FM. जो है हंगामा, और हंगामा पे एंटरटेनमेंट ड्रामा तो होता है, पर एक और बात होती है जो बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेटिव है, दैट इज़ द अपडेट. और अभी हम बात करने जा रहे हैं रेलवे अपडेट के बारे में. और आज जो रेगुलर लोकल ट्रेन्स रहती हैं, दे आर एज पर द शेड्यूल ऑफ समर टाइम टेबल, और समर टाइम टेबल आप अवेल कर सकते हैं इन पर्सन भी किसी भी रेस्पेक्टिव स्टेशन पर जाकर, और रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से. चाहे ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन हो, कौन सी ट्रेन अभी लाइव लोकेटेड कहाँ है, लाइव लोकेशन कहाँ है उस ट्रेन की, या आप कहाँ पहुँचे हैं, एंड जो भी ट्रेन्स हैं, चाहे जो टिकट्स हैं, और जस्ट नॉट फॉर द कश्मीर रेलवे लिंक, दैट इज़ बारामूला, बड़गाम, बानिहाल एंड ये स्टेशन्स नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ कश्मीर का जो रेलवे लिंक है वो नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ पे भी आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कैसे मैं टिकट्स बुक कर सकता हूँ, वो कब पहुंचती है, द अराइवल, द डिपार्चर ऑफ एवरीथिंग. अब देखिए, एक और बात है जिसका ख्याल रखना है कि आज बारिशें हो रही हैं. टेक सम रेनकोट विद यू, और अ विंडस्टो विद यू, और एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू स्टे अवे फ्रॉम द रेन, ईदर द अम्ब्रेला और द जैकेट्स, एंड बी हाइड्रेटेड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आप किसी जो डिले का शिकार ना हो. मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: कहती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है।
1: Definitely we love you too, but इससे ज़्यादा important ये है कि आज का topic क्या है। आज का topic ये है, that is the Bollywood women idols. बहुत सारे eras आए, like there is the golden, like old era, then there is 90s era, then there is the modern era and the epic movies. तो आज हम Bollywood women idols के बारे में बात करेंगे कि लड़कियों ने क्या धमाल मचाया है, चाहे वो पुराने 1950s की heroine हो या उसके बाद 1980s की, 2000s की, या अभी जो करंट बॉक्स ऑफिस हिट्स देती हैं, उनके बारे में बात होगी। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम, और जल्दी से अपना प्यार और विचार हम तक पहुँचाइए, क्योंकि रेडियो चिनार का चार्जर आप हैं।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा तो है, आज का टॉपिक भी है, और आज का टॉपिक हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है कि हम आज वेमेन बॉलीवुड आइडल्स के बारे में बात करेंगे, हर एरा से और अभी एग्जिस्टिंग कौन है, किसका क्या टाइटल है, किसको क्या बुलाया जाता है अदर देन देयर नेम। लेकिन एक बात जरूरी है, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप, और जल्दी से बताइए आपकी फेवरेट जो एक्ट्रेस है ऑफ द ऑल टाइम कौन है। इसके अलावा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक एसओपीज को फॉलो करना ना भूलें और सुनना ना भूलें रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. हंगामा है और आज का टॉपिक भी है. आज का टॉपिक है वेमेन बॉलीवुड आइडल्स, स्पेशली इफ यू विल टॉक अबाउट द गोल्डन एरा. बहुत सारे नाम सामने आते हैं, दे लाइक द टाइमलेस ब्यूटी नरगिस, मधुबाला जिनका टाइटल मरलिन मनरो ऑफ बॉलीवुड, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड स्पेशली अगर हम मीना कुमारी की बात करें, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं और स्पेशली शी इज़ नोन फॉर हर इमोशनल हैवी परफॉर्मेंसेस, इसलिए उनका नाम भी एक टाइटल दिया गया है, दैट इज ट्रेजेडी क्वीन. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं गोल्डन एरा की, जो 1950s की हैं, 1960s हैं, दैट इज़ नौतन, वैजंती माला, वहीदा रहमान, आशा पारेक, एंड देर इज़ वन बाड़ी, एक्चुअली द बाड़ी जो अभी भी रेलिवेंट है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीनत अमान की, जो 1970s का जो स्टीरियोटाइप है एक्चुअली, जो उन्होंने सारे, चाहे वो क्लोदिंग से रिलेटेड थे, रोल से रिलेटेड थे, शी वॉज द वन जिन्होंने बिल्कुल वो स्टीरियोटिपिकल फीमेल या वो बेचारी वाले रोल नहीं किए, बल्कि बाड़ी वाले रोल किए हैं. एंड शी इज स्टिल नोन फॉर हर चॉइसेस एंड द डिसीजंस शी मेड. अब अगर आइकॉनिक मूवीज़ की बात करें तो स्पेशली मधुबाला की वन एंड ओनली अनारकली, जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है इन द मूवी मुगले आजम, दैट इज़ समथिंग दैट विल बी स्टिल रिमेंबर्ड एंड इट विल बी रिमेंबर्ड टिल द, यू नो, it's the Bollywood is there, cinema is there, art is there, and specially ye ek track from the Mughal-e-Azam, teri mehfil mein kismat aazma kar hum bhi dekhenge, ye aaj bhi relevant hai, it's still on Instagram and it is trending by 1.4 million views.

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी

0: भी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू। हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar, the Horus frequency of North Kashmir 90.4 FM. Aur abhi hum ek different era ke bare mein baat karenge, jaise ki hum women Bollywood idols ke bare mein baat kar rahe hain aaj. Aur there is a different genre, different era of 1980s, 2000s, 1990s, jisme Shri Devi, Madhuri Dixit, Rekha, Jaya Prada and Shabana Azmi. And especially agar hum Kajol, Karishma, like these are late 90s से अगर हम बात करेंगे, मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोड़कर और ये सारे जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्चुअली दे आर स्टिल रेलिवेंट कहीं ना कहीं. बहुत सारों ने रियलिटी शोज जो सिल्वर स्क्रीन है वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है. कुछ लोग अभी भी मूवीज़ करते हैं विद देयर लाइक यू नो कैरेक्टर्स चेंज. पहले मेन लीड्स में होते थे, अभी सपोर्टिंग रोल्स में होते हैं, बट उनका जो एक्टिंग का जो जुनून है इट इज़ स्टिल देयर. दे आर नॉट जस्ट यू नो ब्यूटी, इट्स नॉट just about beauty, it's not just about brain, it's not just about the characters they play, it's about the art, jo wo art, wo cinema, jo apni ideology ek bade screen par utarte hain, ek bade screen par leke aate hain aur fir inhe bahut sare awards bhi milte hain. But usse behtar ye hai, awards se zyada inhe logon ka pyar milta hai. अपने टाइम के हिट्स दिए हैं इन्होंने. अगर रेखा की बात करें, शी इज़ सो वर्सेटाइल और स्पेशली उनको एक माना जाता है कि वो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स निभा चुकी हैं और अभी भी निभा रही हैं. इसके अलावा अगर हम शबाना आज़मी की बात करें, शी इज़ नोन फॉर दैट क्वीन ऑफ पैरेलल, क्वीन ऑफ आर्ट, सिनेमा, एक डिफरेंट पर्स्पेक्टिव दुनिया को दिखाना, शबाना आज़मी इज़ नोन फॉर दैट. इसके अलावा अगर हम श्रीदेवी की बात करें, हु डजंट नो शी इज़ द अल्टीमेट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा of 90s, and she is the gorgeous girl, she is the gorgeous person jo actually khoobsurti ke sath sath apni acting mein itni versatile lati lati hain aur la chuki hain. And honestly agar baat kare to she has started her career when she was the age of 12, to 12 saal ki umar se shuru karna and reaching at a point jahan pe unhone apni betiyon ko bhi kuch na kuch wo khoobsurti aur wo talent dhyan mein diya hai.

हाय मैं हूँ अस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार एंड जो आप अभी गाना सुन रहे हैं दैट इज फ्रॉम द मूवी पीकू एंड दिस कैरेक्टर हैज बीन प्लेड बाय दीपिका पाडुकोन एंड बहुत सारी ऐसी नई जनरेशन की जो नई मूवीज आ रही हैं नए कैरेक्टर्स हैं एंड स्पेशली जो एक्ट्रेसेस के बारे में हम आज बात कर रहे थे उनमें प्रियंका चोपड़ा है विद्या बालन है करीना कपूर खान है आलिया भट्ट जिनकी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है अल्फा शर्वरी के साथ शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस एंड अनन्या पांडे सुहाना खान खुशी कपूर प्रतिभा रांता एंड नितिशा गोयल एंड नितिशा गोयल इज लाइक देयर इज अ फैक्ट अबाउट हर दैट शी इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड एंड शी हैज परफॉर्म्ड सो वेल इन लापता लेडीज एंड वन एंड ओनली हम इसके बारे में भी बात करेंगे दे वन एंड ओनली जानवी कपूर बहुत खूबसूरत उनकी एक्टिंग भी है वो खुद बहुत खूबसूरत हैं एंड बहुत स्पेशली लाइक शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे पहले उन्हें जज किया जाता था कि इनका बस एक ही एक्सप्रेशन होता है बट अभी की बात करें शी इज डूइंग रियली वेल Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sudan 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन

The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. वेलकम बैक टू शो हंगामा. सेगमेंट शुरू हो चुका है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट. स्पोर्ट्स अपडेट चाहे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल हो या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के फैक्ट जो सिर्फ यहीं होते हैं, यूजुअली हम उसके बारे में बात नहीं करते या कहीं और उसके बारे में बात होती नहीं है. मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई विद द अपडेट.

The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. Welcome back to Segment Game On. और मैं हूँ RJ Asra. और अभी हम बात करने जा रहे हैं आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा फैक्ट है रिलेटेड टू आवर नेशनल स्पोर्ट दैट इज हॉकी. फॉर अ रीजन हॉकी इज आवर नेशनल स्पोर्ट. अगर हम बात करें 1928 से लेकर 1956 तक टोटल में इंडियन जो मेन फील्ड हॉकी टीम है उन्होंने 8 गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक्स में. Definitely, that is something crazy. That is something to be proud of. And honestly, aisa like hockey hamare desh ka national sport hai. And there is a reason for that. And honestly, jo bhi coaches rahe hain, jo bhi players rahe hain, hamesha se chahe koi bhi sports ho, har kisi ne apna 100% diya hai, dete rehte hain. Aur aise hi bahut sare facts hain. Literally, bahut sare aise facts hain jahan pe hame samne pata chalta hai ki literally kitni mehnat karte hain players. Sports jo bhi players hain, wo kitni mehnat karte hain. And that is such a nice thing to witness. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. और देखिए अभी भी कुछ वक्त बाकी है, आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. 8899049904 इस नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. और आप अपनी जो बातें हैं हम तक पहुँचाइए, अपने जो भी आप कहना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बस आपको डायल करना है. 8899049904 नंबर है, जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

में मेरा दिल ले लिया है और मेरा दिल कहीं और लगता ही नहीं है, मगर क्या करें, चार बजते ही मुझे जाना पड़ता है और चार बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और तड़कता फड़कता ट्रैक तो बनता है। No, this is not the track for you, but इससे पहले कि मैं वो प्ले करूँ, आप सब के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए भाई। ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए करें, अपने सोल के लिए करें और अपनी सोल को रिचार्ज करने के लिए करें। मैं हूँ अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ टुडे, ओवर एंड आउट, एंड दिस इज द ट्रैक फॉर यू।

अंग्रेजी तो पसंद है इस लड़की को, बट क्या करें, जो टच पंजाबी और बॉलीवुड सॉन्ग्स में वो कहीं और नहीं मिलता, तो एंजॉय करते हैं ये ट्रैक में वो सुन सुंदर रेडियो सुना 90.4 FM. आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: नगरी बांडीपुरा तक।
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक।
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक।
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली

फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी

0: खतरे में हैं क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: लारी तू पर सूट रेशमी गेर चले तो भारी भीड़ लगारी तू।
1: एक बार चल गल पूरी सौ कर दू रंग मेरा देख देख दूरी नो दर तू फिर ना बोलगी तेरा संग माड़ा तेरा संग माड़ा तेरा संग माड़ा।
2: अरे राम राम लाडो।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक

पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू हो

पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाय टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सिगरेट, चेन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कष्टी जी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: आए करार हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

कोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ दम तो लेने दो। आ हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ दम तो लेने दो। आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

हमसे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।